0: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साइलेंस 89.8 MHz।
1: रेडियो साइनो 89.8 MHz। तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो।
2: मिक्स बाय डीजे राजी बरकुरबा।

0: घर ये धरती आ गया बाउलट।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारूपी की गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल चल।